0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आज के उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं विमलेश, नमस्कार।
3: और अजीत का भी नमस्कार।
2: सुनते हैं आज का सुविचार। मां महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल, टेक लाल पटेल जी ने सुविचार भेजा है। वो लिखते हैं
3: समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही

0: नई सुबह का आगाज होता है। बस विश्वास रखिए, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है।
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो पहला संदेश हमें मिला है गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना। लिखते हैं, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता आदरणीय विमलेश जी और अजीत जी को सादर नमस्कार। आगे लिखते हैं,
1: उमंग कार्यक्रम के सितम्बर माह के मासिक श्रोता संवाद में श्वेता तंवर जी के साथ जेंडर समावेशन जैसे महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषय पर चर्चा हुई, जो अत्यंत सार्थक ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रही। समान अवसर सम्मान तथा बिना किसी लैंगिक भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के अधिकार पर आधारित ये संवाद हमारी सोच को व्यापक बनाने वाला रहा।
0: आप आगे लिखते हैं, आपका यह मासिक कार्यक्रम विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के लिए अत्यंत उपयोगी है।
1: जी,
0: इसके माध्यम से उन्हें NCERT द्वारा संचालित विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी प्राप्त होती है तथा वे इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित होते हैं।
1: जी।
0: ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम विद्यार्थियों में जागरूकता, सकारात्मक सोच एवं सीखने की भावना को बढ़ावा देते हैं। इस उपयोगी एवं प्रेरणादायक कार्यक्रम के लिए हार्दिक धन्यवाद एवं हमारा आभार।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल
0: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी लिखते हैं,
1: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में हमें बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी सुनने को मिलती है। आविष्कारों के बारे में जानने के साथ साथ भारत के अनमोल ज्ञान, संस्कृति और गौरवशाली विरासत की भी जानकारी मिली। हर प्रस्तुति कुछ नया सीखने और जानने की उमंग जगा देती है।
0: जी।
1: ऐसे शानदार ज्ञानवर्धक और रोचक कार्यक्रम के लिए पूरी टीम को हृदय से बधाई और साधुवाद।
0: और अगला संदेश हमें मिला है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। तो लिखते हैं, प्रिय विमलेश जी और अजीत जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पूरी उमंग टीम और सभी श्रोताओं को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमें दिनांक 14/9/2026 का उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने एक प्यारे डॉगी के बारे में बताया जो अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक की कक्षा 2 पर आधारित थी।
1: जी।
0: वो कहानी हमें बेहद पसंद आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी तरह से कार्यक्रम पेश किया।
1: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र रौनक सेन ने लिखा है,
0: आपका कार्यक्रम उमंग हमें बड़ा सुंदर और शिक्षाप्रद लगता है, साथ ही साथ ज्ञानवर्धक भी। हम इसके नियमित श्रोता हैं। आगे लिखते हैं कि जीवन को खुशहाल और पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए एक पेड़ हर वर्ष अवश्य लगाएं। धन्यवाद।
1: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश देने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं प्रतिष्ठित पुरस्कारों की।
0: जी, तो श्रोताओं, इस क्रम में आज हम बात करेंगे भारत के सर्वोच्च सैनिक वीरता सम्मान परमवीर चक्र की।
1: जी।
0: वैसे परमवीर चक्र का नाम तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी शायद बहुत कम लोग जानते हैं।
1: तो आइए करते हैं शुरुआत और जानते हैं इसके बारे में। श्रोताओं, परमवीर चक्र की स्थापना हमारे प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ये सम्मान जल, स्थल और वायु में शत्रु पक्ष का सामना होने पर सैनिकों द्वारा दिखाई जाने वाली असाधारण वीरता और साहस दिखाने वाले भारतीय सैनिकों को प्रदान किया जाता है।
0: यानी ये विशिष्ट रूप से युद्ध भूमि में दिखाई गई सर्वोच्च वीरता को दिया जाने वाला सम्मान है। आपको बता दें श्रोताओं कि इसे सैनिकों को मरणोपरांत भी दिया जाता है, और ये चक्र यूनाइटेड किंगडम के विक्टोरिया क्रॉस और संयुक्त राज्य अमेरिका के मेडल ऑफ ऑनर के बराबर है।
1: जी, तो अजीत जी, अब बात करते हैं इसके डिजाइन की कहानी पर। इस पदक को डिजाइन किया श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर जी ने। वे स्विट्जरलैंड में जन्मी, उनका मूल नाम था एवानोन लिंडा। वहाँ वे रॉयल मिलिट्री अकादमी के भारतीय कैडेट विक्रम रामजी खानोलकर से मिली और उनकी जीवन संगिनी बनी।
0: जी हाँ श्रोताओ, वे भारतीय सैन्य परंपराओं और भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित थीं।
1: जी,
0: उन्होंने भारतीय संस्कृति और सैन्य परंपराओं का गहरा अध्ययन किया था, और वे एक बहुत अच्छी कलाकार भी थीं।
1: जी,
0: कला कौशल और भारतीय संस्कृति से अनुराग रखने के कारण उन्हें परमवीर चक्र को डिजाइन करने के लिए चुना गया।
1: ये कांस्य का गोल पदक है और इसे बैंगनी रंग के रिबन के साथ पहनाया जाता है। ये जानना बहुत रोचक होगा कि भारतीय सेना के इतिहास में पहला परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया।
0: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर जी की बेटी कुमुदिनी शर्मा के देवर मेजर सोमनाथ शर्मा को सन 1937

0: पेरिस में बड़गाम की लड़ाई में वीरता दिखाने के लिए सर्वप्रथम परमवीर चक्र प्रदान किया गया।
1: बहुत रोचक। इस सम्मान की मूल भावना है कर्तव्य, साहस और सर्वोच्च बलिदान। अजीत जी, क्या परमवीर चक्र केवल थल सेना के सैनिकों को ही दिया जाता है?
0: नहीं विमलेश जी, ऐसा नहीं है। ये भारतीय सशस्त्र सेनाओं के उन सदस्यों को दिया जाता है जिन्होंने युद्ध के दौरान असाधारण वीरता दिखाई हो। यह भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता सम्मान है।
1: और इसे प्रदान कौन करता है?
0: परमवीर चक्र भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। परमवीर चक्र केवल एक सैन्य पदक नहीं बल्कि भारत के उन वीर सैनिकों की स्मृति और सम्मान का प्रतीक है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च योगदान दिया।
1: भारत के वीर सैनिकों को हमारा नमन। जय हिंद।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र के बारे में। तो अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, परमवीर चक्र पदक को डिजाइन किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: परमवीर चक्र पदक को डिजाइन किसने किया था? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है किसान की होशियारी।
1: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि किसान ने कैसे अपने चातुर्य और बुद्धिमत्ता से भालू से पीछा छुड़ाया और अपनी जान बचाई।
2: एक किसान अपना खेत जोत रहा था, अचानक कहीं से एक भालू आ गया। भालू किसान को मारने झपटा। किसान ने कहा,
3: मुझे क्यों मारते हो? उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा।
2: भालू ने कहा,
4: भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी।
2: किसान ने आलू बो दिए, उपज हुई तो भालू को पत्ते खाने को मिले। भालू चिढ़कर रह गया। अगली बार भालू ने कहा,

0: इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी।
1: इस बार किसान ने गेहूं बो दिया। जब उपज हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं, भालू को मिली केवल जड़ें। भालू खींच कर रह गया। इस बार भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। उसने किसान से कहा,
0: भूमि के सबसे ऊपर और भूमि के नीचे की उपज मेरी।
1: किसान मान गया। इस बार किसान ने लगाया गन्ना। जब उपज हुई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें। भालू का सिर चकरा गया।

0: अभी आपने सुना ये हास्य प्रधान कार्यक्रम किसान की होशियारी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया? माँ की गोद ने और नदियों की घाटियों ने। हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

0: नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।
1: लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं।
1: हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन,
1: चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हाँ, चल घर चल। अरे चल, सब खोज रहे हैं तुझे। अरे चल ना, जल्दी कर।

0: अभी तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था, और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई, मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो, ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको, तुम अपने जीवन दे सको, मायने दे सको।
0: बसंती घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती।

0: और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
1: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रसधाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसी दी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे
1: दीदी,
2: क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है दीदी, चल।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका तो उपाय क्या है? क्या करें हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।
3: कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।
5: अरे चल ना, जल्दी कर ना,
6: जल्दी पैर बढ़ा
2: कर के लानी। अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
7: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
2: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
5: वो भला क्यों? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ,
2: मेरे लिए नहीं, अपनी कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
7: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
5: हाँ।
7: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
5: और क्या
7: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
5: हाँ?
2: देखो, इन जंगल के पेड़ों में ही तो प्राण बसे हैं कोसी के। आमा, तुम तो जरूर जानती होगी, तुम बताओ ना कि क्या रिश्ता है कोसी का हमारे पिनाक के जंगल से? बताओ ना कि क्या रिश्ता है कोसी का हमारे पिनाक के जंगल से?
7: आज से 40 साल पहले जब ब्याह कर मैं गांव आई थी, तब तो कोसी अपने उफान पर थी, और आज अब तक में उसके प्राण है। बेटा, तू कौन है, कहां से आई है?
2: आमा, मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता।
7: हाँ।
2: इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर

और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांवों में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, खीराकोटा, कांटली आदि गांवों में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।
0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने ये साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
3: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु,
2: अर्शद,
3: चेतना,
2: कुसुमलता,
3: वीरेंद्र
2: और हमारी आज की विशेषज्ञ
3: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: உங்கள் ஊட்டி எஃப்எம் 101.8
6: நேரம் 10:30.
7: ஊட்டி எஃப்எம் 101.8 இளமை உலகம்.
8: நேர்களை, இன்றைய இளமை உலகம் நிகழ்ச்சியில் கோயம்புத்தூர் வெள்ளலார் கல்லூரி மாணவர்கள் வழங்கும் பல் சுவை நிகழ்ச்சி.
3: வாங்க, வணக்கம். உங்க பேர் சொல்லுங்க.
9: வணக்கம், என் பெயர் ஆராதனா.
3: ஆராதனா, அருமையான பெயர். சொல்லுங்க, நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, என்ன படிக்கிறீங்க நீங்க?
9: நான் 2nd ஆண்டு ஆங்கில இலக்கியம் படிச்சிட்டு இருக்கேன்.
3: அப்படியா, ஓகே, அருமை, வாழ்த்துக்கள். நீங்க இன்னைக்கு என்ன சொல்ல போறீங்க?
9: நான் இன்னைக்கு நான் முத்துக்குமார் அவர்கள் இயற்றிய தூர் என்னும் தலைப்புல ஒரு கவிதை வாசிக்க போறேன்.
3: ஓகே, அருமை, அருமை. நீங்க இப்ப முத்துக்குமார் ஐயாவை எங்களுக்கு நினைவுபடுத்த போறீங்க, வாசியுங்க.
9: வேப்பம்பூ மிதக்கும் எங்கள் வீட்டு கிணற்றில் தூர்வாரும் உற்சவம் வருடத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு விசேஷமாய் நடக்கும். ஆள் கிணற்றில் அப்பா முங்க முங்க அதிசயங்கள் மேலே வரும். கொட்டாங்குச்சி, கோழி, கரண்டி, கட்டையோடு உள்விழுந்து துருப்பிடித்த ராட்டினம், வேலைக்காரி திருடியதாய் சந்தேகப்பட்ட வெள்ளி டம்ளர்,